0: एक हो जाए बेगू।
1: टॉप हिट्स,
2: टॉप हिट्स,
1: महबूब तारीन हॉ,
2: टॉप हिट्स दार रेडियो शोमा,
1: महबूब तारीन,
2: इरोए यास फोरुश को हो ये डे टू डे।